चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्ति भाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह है। श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: बस तुम
1: अभिजीत एंड अलका याग्निक ब्रिंगिंग अस टू 25 मिनट्स बिफोर द 6 o'clock hour. Heading back to Edmonton, Alberta, saying see drama once again to Geeta and David, the Dunarines. How about this one for you guys?

0: Indian Expo is returning. Indian Style Expo Macquarie will be reopening on June 27th. Full Indian restaurant, new containers from India. Indian Style Expo, 10 a.m. to 8 p.m. every day, starting on June 27th. Located opposite the Center of Excellence in Macquarie.
1: Bring the whole family to the India in Style Expo 2026 grand opening. From beautiful Indian clothing and stylish footwear to home decor, furniture, accessories and religious items, there's something for everyone. Plus, enjoy a delicious meal at our newly opened restaurant. Join us from the 27th of June and open daily from 10 a.m. to 8 p.m. opposite the Center of Excellence Macquarie. India in Style Expo, where India comes alive.
2: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
3: भक्ति इज डिवोशनल वर्शिप डायरेक्टेड टू द सुप्रीम डेटी अर्पण मींस एन